में जवाब नहीं दिया। मैंने पहले कह दिया कि हमारे हाथ में अलग वकूफ मत बनो। इसका कष्ट महोदय नौकरी में रखा ही क्या है? एक काम करिए, तुम्हें 1,00,000 रुपये